श्रोते हो रेडियो मन भवन 90.8 FM घेता है खास फोन इन कार्यक्रम हेलो मन भवन। एक खास संधि तुम आवड़त गाण संगी थे ही थेट रेडियो वर तुम्हार मनात कुछ ही गाण कई खास आठवनी शुभेच्छा कि तुमसे मत आम शेयर करा दर मंगलवार दुपारी 12 वाजता संपर्क क्रमांक 9284449433 विसरू नका। दर मंगलवार दुपारी 12 वाजता फोन घ्या गाण सांगा आणि बनवा हा क्षण खास RJ शुभांगी सोबत फक्त रेडिओ मन भवन 90.8 FM वर ऑलवेज।

इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियाँ कई देशों के संघर्ष के दौर की। वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में। कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में। कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं, यही अवसर चेत्या नहीं, मनुष्य जन्म का यह जो सर्वश्रेष्ठ अवसर तुम्हें मिला था, इसमें भी तुम नहीं चेते, नहीं जागृत हुए, तुम्हारी अंतरात्मा नहीं जागी। तुमने क्या किया? पशु जो पाली देह, तुमने अपने इस कीमती शरीर को ठीक वैसे ही पाला जैसे कोई पशु अपने जिस्म को पालता है। सिर्फ खाने पीने सोने और भोग विलास में ही तुमने अपनी पूरी ऊर्जा नष्ट कर दी। इसका परिणाम क्या हुआ? अगली पंक्ति में कबीर कहते हैं, राम नाम जाप्या नहीं, तुमने उस राम नाम को, उस भीतरी आत्म तत्व को कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, जो इस नश्वर शरीर के भीतर छिपा अमर सत्य था। और अंत क्या हुआ? अंति पड़ी मुख खेह, अंत समय में जब काल का बुलावा आया तो उस मुख में जिसे तुम 56 भोग खिलाते थे केवल खेह यानी

0: माध्यम जिसके द्वारा आत्मा अपने परमात्मा से मिल सकती है। लेकिन जब मनुष्य केवल इंद्रियों के सुख में ही लिप्त रहता है तो वह अपनी आध्यात्मिक प्रगति को रोक देता है। कबीर समझा रहे हैं कि बिना राम नाम के यानी बिना आत्मबोध के मनुष्य की सारी बौद्धिक उन्नति और सारा ऐश्वर्य महज एक पशु के जीवन जैसा ही है। मौत के समय जब यह भौतिक शरीर राख बनता है तब समझ आता है कि हमने एक अमर अवसर को केवल मिट्टी के बदले में गंवा दिया। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा खुद से यह कड़वा सवाल कीजिए कि हमारे और एक पशु के दिनचर्या में क्या बुनियादी फर्क है। अगर हम भी सिर्फ संग्रह करने और भोगने में लगे हैं तो हम कबीर की इस कसौटी पर कहाँ ठहरते हैं। आज कोशिश कीजिए इस शरीर के मोह से थोड़ा बाहर निकलने की। देह की रक्षा जरूर कीजिए पर इसे ही अपना अंतिम लक्ष्य मत मानिए। अपने भीतर के उस राम को भजिए, उस चैतन्य सत्ता का ध्यान कीजिए जो इस देह के मिटने के बाद भी बची रहती हैं। सांसों की पूंजी खत्म होने से पहले जाग जाइए ताकि अंत में आपके हाथ राख नहीं बल्कि अमरता का आनंद लगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साथ हो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: Tune in anywhere. Radio Man Bhavan 90.8 FM. Always heart touching.
2: Hi, मी आहे RJ विभूति आणि आपण ऐकत आहात Radio Man Bhavan 90.8 FM. Always heart touching.
3: ग्राम गीता चिंतन भाग 24। हे सूत्र जर या देशातील प्रत्येक जाणत्या माणसाने अभ्यासले असते तर आज भारत उच्च पदावर पोहोचला असता। आज देशाची काय अवस्था आहे? एक कवी वर्णन करतो, किसी दोसे हमने तंबाकू मांगी तभी किसी भिकारी ने हमारे ओर हाथ बढ़ाया। मैंने कहा, भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? ओ बोला, तंबाकू मांगते हुए आपको आई थी क्या? अरे बाबूजी, मांगना हमारे देश वालों का कैरेक्टर है। जो जितना सफाई से मांगे वो उतना एक्टर है। आजादी के बाद मांगने वालों की बाढ़ आ गई, देने वालों का सूखा पड़ा है। जिसे देखो वो मांगने वालों के लाइन में भूखा खड़ा है। चंदा मांगने वाला भिखारी, धंधा मांगने वाला भिखारी, दान मांगने वाला भिखारी, दहेज मांगने वाला भिखारी, और तो और नोट मांगने वाला भिखारी, नोट मांगने वाला भिखारी, और तो और वोट मांगने वाला भी भिखारी। जो हर दरवाजे पर जाता है अपनी नाक रगड़ता है और घिस जाने पर रबर की खरीदता है फिर भी नाक वाला कहलाता है। बाहर से देखिए रबर की नाक, पत्थर का दिल, जनता के जिम्मे इलेक्शन का बिल। लोग बात समाचार तो समाचार, पड़ोसी से आचार तक मांग के खाते है। रहा विचार तो महंगाई के मारपीट से दफन हो गया। हे बाबूजी, समाजवाद उदासीन आएगा, समाजवाद उस दिन आएगा जब पेट के लिए कोई नहीं करेगा बेईमानी। हर नागरिक दिल से कहेगा हम हिंदुस्तानी। इससे तो अच्छा मेरा धंधा है जो भिखारी का है। ओ बाबूजी, एक एक पैसा ईमानदारी का है, ना किसी की जेब काटी ना किसी का गला। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। ही अवस्था गाव शहर देशाची होऊ नये यास तव 70 वर्षापूर्वी पासूनच ग्रामगीता ग्रंथासह साहित्य लेखन वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकोजी महाराजांनी जाणत्या माणसाचे, समाज सुधारकाचे, देशभक्तांचे, युवा पंडितांचे, बुवा पंडितांचे, राजकीय पुढाऱ्यांचे चिंतन अभ्यासासाठी साहित्य समोर ठेवले। ते स्वतः देखील देश कार्यासाठी खूप झटलेत। तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय वसंतराव नाईक वर वंदनीय राष्ट्रसंतांचे भेटीला आले असता ते बोलले, वसंतरावजी, आता आमची एकच इच्छा आहे, या भारतात बंधुभाव नित्य वसू।

0: श्रोते हो, हसी का हंगामा कहकहों का खजाना जाला अपन म्हणतो तो म्हणजे हास्य तरंग।
1: एक था गरीब सब्जी वाला आणि एक थी परी महिलों की सब्जी वाला। महिलों की परी नवंबर की ठंडी में जब वो गई मंडी में, सब्जी वाले का उड़ गया होश, नरम नरम लाइफ में गरम गरम जो।
0: कार्यक्रमात आम्ही आपल्या सर्वांचं स्वागत करत आहोत।
2: Hee hee hee hee hee

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण कर रहे हैं सुप्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी का। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, जिसका सही जवाब देने वाले भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छायाचित्र। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। आप हमें SMS के जरिए भी जवाब भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7771908908। नंबर एक बार फिर सुन ले, 7771908908। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन, लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण के खिलाफ जब एक ओर पूरा भारत लड़ाई लड़ रहा था, भारत मां के वीर सपूत जब ब्रिटिश शासन के समक्ष चुनौती बनकर लगातार खड़े हो रहे थे, क्रांति के मार्ग पर चलते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल रहे थे, तब दूसरी ओर भारत का एक सच्चा सपूत अपनी कलम की ताकत से पूरे देश को एकजुट कर रहा था। उस वीर सपूत का नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी न सिर्फ एक उपन्यासकार थे बल्कि वो एक महान कवि, गद्यकार और पत्रकार भी थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं से स्वतंत्रता की ऐसी अलख जगाई जिससे पूरा भारत वंदे मातरम के जयघोष से गूंज उठा। हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की ही रचना है। स्वाधीनता संग्राम के दौरान वंदे मातरम एक मंत्र की तरह पूरे भारत में गूंज उठा था। बलिदान की एक ऐसी भावना जनमन में पैदा हो गई थी कि जाति, धर्म और संप्रदाय की दीवारें टूट गईं। भारतीयता ही हर व्यक्ति का प्रथम परिचय और भारत की आजादी ही सबका पहला लक्ष्य हो गया। सच तो ये है कि उनका लिखा गीत वंदे मातरम स्वाधीनता संग्राम के उस दौर में अंग्रेजों की खिलाफत करने का प्रतीक बन गया था और देश की आजादी के बाद वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत घोषित हुआ। बंकिम चंद्र चटर्जी ओजस्वी राष्ट्रवादी और साहित्यकार थे। वे आधुनिक बांग्ला साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। बंकिम बाबू ने अपनी कलम के जरिए भारतवासियों के भीतर ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह की चेतना जगाई। बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म 27 जून सन 1838 को उत्तरी 24 परगना के कंथलपाड़ा नैहाटी में एक परंपरागत समृद्ध और कुलीन बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता सरकारी नौकरी में थे, जो बाद में बंगाल के मेदिनीपुर में उप कलेक्टर बन गए। मेदिनीपुर में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर बंकिम चंद्र चटर्जी ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। किताबों से उन्हें अत्यंत प्रेम था तथा खेल कूद में भी उनकी विशेष रुचि थी। बंकिम चंद्र चटर्जी का विवाह मात्र 11 वर्ष की आयु में ही हो गया था और उनकी पत्नी का निधन कुछ ही वर्षों बाद हो गया। उसके बाद उन्होंने दूसरा विवाह राजलक्ष्मी देवी से किया। बंकिम चंद्र चटर्जी को उसी साल स्नातक की उपाधि प्राप्त हुई जिस साल भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ पहली बार संगठित लड़ाई लड़ी गई थी, साल 1857। इसी साल उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए पास किया। प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए की उपाधि प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय थे। सन 1869 में उन्होंने कानून की डिग्री भी हासिल की। वे न सिर्फ एक साहित्यकार थे बल्कि एक सरकारी अधिकारी भी थे। उन्होंने अपने अफसर पिता की तरह कई सरकारी उच्च पदों पर नौकरी की। शिक्षा समाप्ति के तुरंत बाद सन 1858 में डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पर उनकी नियुक्ति हो गई थी। वो कुछ समय तक बंगाल सरकार के सचिव पद पर भी रहे। बंकिम चंद्र चटर्जी को राय बहादुर और CIE की उपाधियां भी प्राप्त हुईं। सन 1891 में वे सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुए। सरकारी नौकरी करते हुए ही उन्होंने 1857 का संग्राम भी देखा, जिसने उनके मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था।

सन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी शासन प्रणाली में व्यापक परिवर्तन किए गए थे। शासन भार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न रहकर महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया था। सरकारी नौकरी में होने की वजह से बंकिम बाबू किसी सार्वजनिक आंदोलन में प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं कर सकते थे। इस कारण उन्होंने साहित्य सृजन के जरिए स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति लोगों के भीतर जागृति पैदा करने का संकल्प लिया। उनके भीतर राष्ट्र गौरव की भावना आरंभ से ही बलवती थी। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति से उन्हें अत्यंत प्रेम था। बचपन से ही उन्हें संस्कृत साहित्य में विशेष रुचि थी। हालांकि उनका अंग्रेजी भाषा ज्ञान भी बहुत अच्छा था, लेकिन बांग्ला भाषा से उनका आत्मिक जुड़ाव था। अंग्रेजी भाषा से उनका लगाव तब समाप्त हो गया था जब अंग्रेजी के एक अध्यापक ने उन्हें बुरी तरह डांटकर नीचा दिखाया था। आजीविका के लिए उन्होंने सरकारी सेवा अवश्य की, परंतु राष्ट्र प्रेम और स्वभाषा प्रेम उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। यही कारण है कि युवावस्था में उनके एक मित्र ने जब अंग्रेजी में उन्हें पत्र लिखा तो उन्होंने पत्र पढ़े बिना ही इस टिप्पणी के साथ उसे लौटा दिया कि अंग्रेजी न तो तुम्हारी मातृभाषा है और न ही मेरी। सरकारी सेवा में रहते हुए भी वे कभी अंग्रेजी भाषा के दबाव में नहीं आए। साहित्य जगत में उनका प्रवेश कविताओं के माध्यम से हुआ था। उन दिनों बांग्ला भाषा में गद्य और उपन्यास लेखन का चलन बहुत कम था। बंकिम बाबू ने इस दिशा में पथ प्रदर्शक का काम किया। हालांकि उनकी पहली प्रकाशित कृति राजमोहन्स वाइफ अंग्रेजी में थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने बांग्ला भाषा में विपुल साहित्य रचा। सन 1865 में मात्र 27 वर्ष की उम्र में उन्होंने दुर्गेश नंदिनी नामक उपन्यास लिखा। इस ऐतिहासिक उपन्यास से ही साहित्य जगत में उनकी धाक जम गई। जिस कुशलता के साथ वे उपन्यास लिख रहे थे, उसी कौशल के साथ वे कविताएं भी रच रहे थे, जो लगातार प्रकाशित होती रहती थीं। आगे चलकर सन 1866 में कपाल कुंडला नामक उपन्यास की रचना उन्होंने की, जो बहुत चर्चित रही। इसके बाद तो अनेक रचनाएं उन्होंने की। मृणालिनी, विषवृक्ष, चंद्रशेखर, रजनी, देवी चौधुरानी आदि। बांग्ला साहित्य के जरिए उन्होंने भारतीय जनमानस तक गहरी पैठ बनाई तथा उनकी रचनाओं का अनुवाद दुनिया की कई भाषाओं में हुआ। इस तरह अनेक उपन्यासों की रचना कर बंकिम चंद्र चटर्जी साहित्य जगत में छा चुके थे। इन सबके बीच सन 1872 में उन्होंने एक मासिक पत्र का प्रकाशन भी आरंभ किया, जिसका नाम था बंग दर्शन। इस पत्र के जरिए वे गंभीर साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे उठाया करते थे। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने बंग दर्शन में लिखते हुए ही साहित्य जगत में प्रवेश किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी को वे अपना गुरु मानते थे। वे कहा करते थे कि बंकिम बांग्ला लेखकों के गुरु और बांग्ला पाठकों के मित्र हैं। सरकारी सेवा में रहते हुए बंकिम बाबू को कहीं न कहीं ये एहसास हो चुका था कि अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तानियों पर राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक सभी तरह से अत्याचार कर रही है। उन्हें ये भी लगने लगा था कि ब्रिटिश सत्ता हमारी भारतीय संस्कृति की विवेचना गलत तरीके से कर उसे विश्व समुदाय के समक्ष रखती है। ये बात उन्हें लगातार कचोटती रहती थी, क्योंकि भारत गौरव सदा से उनकी आत्मा का संगीत था।

बंकिम बाबू का मानना था कि अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता के असल सत्व को वे अपने लेखन के माध्यम से दुनिया के समक्ष रख सकते हैं। उनके साहित्य सृजन के पीछे की मूल भावना भी यही थी। उनका सर्वाधिक चर्चित उपन्यास था आनंद मठ, जो सन 1882 में प्रकाशित हुआ। ये उपन्यास 1773 में उत्तर बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह पर केंद्रित था। इसी उपन्यास में शामिल किया गया था सुप्रसिद्ध गीत वंदे मातरम। एक तरफ अंग्रेजी सरकार की नौकरी और दूसरी तरफ देश के नव जागरण के लिए उच्च कोटि का साहित्य सृजन, ये कार्य तलवार की धार पर चलने जैसा था। लेकिन बंकिम बाबू डरे नहीं, रुके नहीं। उनकी साहित्य साधना अनवरत जारी रही। 1870 से 80 के दशक में ब्रिटिश शासकों ने सरकारी समारोहों में गॉड सेव द क्वीन, इस गीत को गाना अनिवार्य कर दिया था। ब्रिटिश सत्ता के इस आदेश से बंकिम बाबू को ठेस पहुंची, जो उन दिनों डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्यरत थे। संभवतः इस गीत के विकल्प के तौर पर ही 7 नवंबर सन 1876 को उन्होंने संस्कृत और बांग्ला के मिश्रण से एक नए गीत की रचना की, जिसका शीर्षक था वंदे मातरम। शुरुआत में इसके केवल दो ही पद रचे गए, जो कि संस्कृत में थे, और इन दोनों ही पदों में मातृभूमि की वंदना थी। जब सन 1882 में उन्होंने आनंद मठ नामक बांग्ला उपन्यास लिखा, तब इस गीत को उस उपन्यास में शामिल कर लिया, और इस तरह ये गीत अत्यंत लोकप्रिय हो गया। सन 1896 में कोलकाता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया, और इसके बाद तो ये गीत हर भारतीय का कंठहार बन गया। वंदे मातरम गीत क्रांतिकारियों के रगों में जोश बनकर दौड़ता था। वंदे मातरम के जयघोष ने ब्रिटिश सत्ता की नींव हिलाकर रख दी थी। उनका उपन्यास

द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में वंदे मातरम गीत लोकप्रियता की दृष्टि से दूसरे स्थान पर रहा। कम ही कविताओं और गीतों के भाग्य में ऐसा यश आता है। आधुनिक बांग्ला साहित्य के प्रवर्तक बंकिम चंद्र चटर्जी का निधन 8 अप्रैल सन 1894 को हुआ। एक ऐसे साहित्य सेवी, देश सेवी और सच्चे भारतीय के अवसान से समूचा देश शोक में डूब गया। उनकी रचनाएं आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी कलम की ताकत से स्वतंत्रता सेनानियों का जोश बढ़ाने का काम किया। भले ही वो कभी शारीरिक रूप से आजादी की लड़ाई में नहीं उतरे, लेकिन उनकी रचनाओं, उनके लेखों, उनकी कविताओं, उनके शब्दों ने जो राष्ट्र चेतना जगाई, वो अतुलनीय है। वंदे मातरम जैसे अमर गीत के रचयिता, कलम के ऐसे महान सिपाही को हमारा शत शत नमन।

0: सरकार आपको बार बार बता चुकी है कि कोविड-19 पीरियड में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप जागरूक बनिए, सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन कीजिए। कोरोना जितनी घातक बीमारी है, उतना ही सरल इसका बचाव भी है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की। और श्रोताओं, अब वक्त है आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के विजेताओं के नाम जानने का। हमारा सवाल था कि गणेश दामोदर सावरकर का जन्म किस तारीख को हुआ था। इसका सही जवाब है 13 जून। यूं तो कई श्रोताओं ने हमें सही जवाब लिख भेजा है, लेकिन लकी ड्रॉ द्वारा चुने गए हमारे 4 भाग्यशाली विजेता हैं। निवाड़ी से सूर्यकांत त्रिपाठी, नासिक महाराष्ट्र से राजा लोधी, बालाघाट से दुर्गा देवी सतीजा और भोपाल से घनश्याम तिवारी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं

आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र। और श्रोताओं, अब बारी है आज के सवाल की। आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हमारा आज का सवाल है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? सवाल एक बार फिर सुन लें, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। आप हमें SMS के जरिए भी जवाब भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 777-908-908। नंबर एक बार फिर सुन लें, 777-908-908। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं अभय चौहान एक बार फिर हाजिर हुए हैं करियर गाइडेंस प्रोग्राम की अगली एपिसोड में, और मेरे साथ हैं बाजी सर। नमस्कार बाजी सर।
1: नमस्कार सर। नमस्कार।
0: नमस्कार। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने कवर किया था कि कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए। बाजी सर, हमने बातचीत की।
1: करेक्ट है, करेक्ट जी, है।
0: जी। तो उसमें कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए, तो उसमें चार फैक्टर का हमने बातचीत की थी कि चार इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है स्पेशलाइजेशन लेने के पहले वो देखना चाहिए। तो एक हो गया एजुकेशन बैकग्राउंड, पर्सनैलिटी टाइप, पर्सनल इंटरेस्ट और अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। तो ये चार ही फैक्टर हम आज जो है एक एक स्पेशलाइजेशन के लिए हम उसकी बातचीत हम आज करेंगे।
1: करेक्ट।
0: दोस्तों, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बाजी सर, आपकी इजाजत हो तो बढ़ाइए।
1: हाँ जी सर। हाँ जी सर।
0: जी, तो आज जो हम एमबीए के बाद करने के बाद जो स्पेशलाइजेशन जो है मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन की हम आज चर्चा करेंगे।
1: जी सर।
0: मैंने जो देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है कि मार्केटिंग का स्पेशलाइजेशन जो होता है, अब हम थोड़ा सा एक मार्केटिंग को थोड़ा सा टच भी कर लेंगे बाजी सर, जो यंग दोस्त हैं उनके लिए हम थोड़ा सा आपका मैं ओपिनियन में जानना चाहूंगा, मार्केटिंग फंक्शन क्या होता है कंपनी में।
1: राइट सर। अभी मैं थोड़ा सा आपको इसमें एलाबरेट करके बताता हूँ सर। नॉर्मली लोगों का परसेप्शन जो है वो ये है कि जिसको कुछ आता नहीं उसने मार्केटिंग लेना चाहिए।
0: जी, जी।
1: ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना
0: जी।
1: हम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं या फिर कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मार्केटिंग इज अफेक्ट्स फंक्शन।
0: ओके।
1: मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लो आप, है ना, सर्विस इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो
0: जी,
1: है ना, या फिर आईटी इंडस्ट्री हो, मार्केटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इन एनी बिजनेस।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: और ये फंक्शन का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी और बिजनेस पे।
0: बिल्कुल सही।
1: तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ना, यही फंक्शन है जो कंपनी को तरक्की की तरफ लेके जाता है।
0: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो दोस्तों, उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के सारे जो डिपार्टमेंट है वो बेकार है, उसका मतलब ये नहीं होता।
1: ये नहीं होता
0: जी। प्रोडक्ट आप चाहे कुछ भी बना लें, जो बाजी सर कह रहे हैं, सर्विसेस आपकी चाहे कुछ भी रहे, पर उसको मार्केट में जाके बेचना है या उसको मार्केट में, बिकेगा नहीं तो कंपनी चलेगी नहीं, इन शॉर्ट।
1: करेक्ट
0: जी। बाजी सर, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे चार पॉइंट हमने बात की कि फोर फैक्टर्स जो होते हैं स्पेशलाइजेशन चुनने के लिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप शुरुआत कीजिए। तो एजुकेशन बैकग्राउंड क्या होना चाहिए?
1: राइट राइट सर, मैं बताता हूँ आपको। अभी देखिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है
0: जी,
1: इसमें वी रिक्वायर्ड ऑल काइंड ऑफ ग्रेजुएट्स
0: जी,
1: लाइक टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, दोनों तरीके के लोग इसको लगते हैं
0: जी।
1: जैसे इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है तो वहाँ पे टेक्नो कमर्शियल मैनेजर्स लगते हैं।
0: ओके ओके।
1: मतलब जिनको टेक्निकल नॉलेज है और उनको मार्केटिंग का भी, उनके पास स्पेशलाइजेशन
0: है जी।
1: तो मार्केटिंग फंक्शन चूज दोनों लोग कर सकते हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड वाले और नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाले भी।
0: जी जी। मैं जो समझता हूँ कि अगर टेक्निकल बैकग्राउंड है तो आप टेक्निकल कंपनी में आप अपना जॉब अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर आप नॉन टेक्निकल, आपका ग्रेजुएशन है तो आप नॉन टेक्निकल में, थोड़ा
1: ट्रू,
0: मतलब टेक्निकल चाहे नॉन टेक्निकल है, ग्रेजुएशन बैकग्राउंड, दोनों में अपॉर्चुनिटी सेम अवेलेबल। जी जी। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, बाजी सर ने जैसे बताया कि एजुकेशन का क्या होना चाहिए, और नेक्स्ट मैं पॉइंट टच करता हूँ पर्सनालिटी, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उस इंडिविजुअल की किस टाइप की पर्सनालिटी होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है बाजी सर कि मेरी पर्सनालिटी क्या है जो मार्केटिंग के लिए सूट होता है। तो दोस्तों, अगर कागज और पेन है तो पकड़ लो और लिख लो आप जरा, क्योंकि बाजी सर आपका भी एक्सपीरियंस होगा, मेरा भी है, गलत पर्सनालिटी के लोग गलत प्रोफाइल में अगर आ जाते हैं तब बड़ा भयंकर डिजास्टर
1: हो जाता है
0: जी। ये आपने भी अपने 18-20 साल के करियर में,
1: राइट, वो उसके लिए भी प्रॉब्लम होता है और कंपनी के लिए भी प्रॉब्लम होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही। देखिए, कंपनी के लिए प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर भी ओके, पर आपकी इंडिविजुअल के लिए प्रॉब्लम हो रहा है तो बड़ा तकलीफ हो जाता है,
1: बराबर है, उसमें आपका नुकसान भी है।
0: जी जी। तो पर्सनालिटी जो है मार्केटिंग के लिए क्या सूट होती है, आज हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, जिनकी एक्सट्रोवर्ट, आउटगोइंग, आउटस्पोकन जिनकी पर्सनालिटी होती है, जो किसी से भी खुल के बात करते हैं, जिन लोगों की फ्रेंडशिप जल्दी से हो जाती है और खुल के कहीं भी किसी से भी बात कर लेते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पे बात हो जाती, जान पहचान के हैं, अनजान है, रिलेशन में है, आपकी अगर उस तरह की पर्सनालिटी है तो वो आपको परफेक्ट सूट करती है मार्केटिंग के प्रोफाइल के लिए। अब उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है मैं वो भी बताता हूं। आप अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विसेज मार्केट में लेके जाएंगे तो आपके पास कोई पहचान वाला कोई नहीं रहेगा, जिनसे भी आप बात करने जाएंगे तो वो जो रहेंगे कंप्लीटली अनजान लोग रहेंगे और आपको खुल के बात करनी पड़ेगी। आपकी क्या राय है बाजी सर?
1: राइट है सर, ये अपने जो क्वालिटीज बताई है ना, पर्सनालिटी ट्रेट जिसको हम लोग बोल सकते हैं
0: जी,
1: ये हर एक ने खुद को टेस्ट करना चाहिए। जो भी स्टूडेंट अभी सोच रहे कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज करना चाहिए, तो पर्सनालिटी एक बार उसने हर एक ने टेस्ट कर लेना चाहिए कि क्या मैं एक्स्ट्रावर्ट हूँ, आउटगोइंग हूँ, आउटस्पोकन हूँ, है ना?
0: जी, जी.
1: क्या मेरा पॉजिटिव माइंडसेट है,
0: yes, yes,
1: है ना?
0: Yes,
1: मुझे
0: yes.
1: बहुत सारे दोस्त कनेक्ट करने में इंटरेस्ट है
0: जी.
1: तो ये टेस्ट करके लेना चाहिए
0: जी,
1: दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
0: वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक चीज इसमें एक थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा। मैंने देखा है कि मैक्सिमम समय में कैसा होता है कि दोस्त ने मार्केटिंग ले लिया और अपॉर्चुनिटी ज्यादा इसमें है, जॉब जल्दी मिल जाएगा करके आप एंट्री ले लेते हो स्पेशलाइजेशन, बाद में आपको बड़ी तकलीफ होने वाली है। और मार्केटिंग प्रोफाइल भी ऐसा होता है कि आप मेंटली रिजेक्शन लेने के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि 100 के पास अगर आप जाएंगे तो 30 ही लोग जो आपकी कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस लेने वाले हैं। आप मेंटली प्रिपेयर हो, अगर आपकी पर्सनैलिटी वैसी है तो आप सूट करते हैं मार्केटिंग के प्रोफाइल के लिए।
1: करेक्ट। तो मैं अभी पर्सनालिटी के बाद में थर्ड पॉइंट पे चलता हूँ
0: जी,
1: पर्सनल इंटरेस्ट
0: जी जी।
1: तो ये तीसरा टेस्ट है दोस्तों, जहाँ पे आप अपने आप को टेस्ट कर लीजिए कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट किस चीज में है
0: जी।
1: जैसे मुझे लोगों के साथ बात करने में मजा आता है
0: जी,
1: अच्छा लगता है
0: जी,
1: मुझे ट्रैवलिंग अच्छा लगता है
0: जी,
1: मुझे बहुत सारे लोगों से जाके, नए लोगों से जाके मिलना पसंद है
0: जी,
1: है ना? फील्ड का जो जॉब है वो मुझे पसंद है
0: जी,
1: नहीं
0: जी,
1: है
0: जी।
1: कुछ लोग होते हैं जिनको एक जगह पे बैठ के काम करने में अच्छा लगता
0: है, बिल्कुल सही कहा आपने,
1: और कुछ लोग होते हैं जो जिनको एक जगह पे बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उनको ट्रैवलिंग, घूमना, ये वो बाहर के काम अच्छे लगते हैं
0: जी जी जी।
1: तो यदि आपको बाहर घूमना अच्छा लगता है तो देन दिस मार्केटिंग एंड सेल्स फंक्शन इज सुटेबल फॉर यू।
0: परफेक्टली, परफेक्ट कहा आपने।
1: तो ये खुद एक छोटा सा टेस्ट, एक इंट्रोस्पेक्ट होके ये पर्सनल इंटरेस्ट अपना क्या है
0: जी,
1: ये एक बार हर एक ने देख लेना चाहिए
0: जी जी जी। मैं आपको एक रियल इंसिडेंट भी शेयर कर देता हूँ, और दोस्तों के लिए भी हो जाता है, क्योंकि इनिशियली मेरे पास एक बंदा आया, न्यू रिक्रूट हो गया है, मार्केटिंग लिया, हम दूसरे दिन से उसको बोलते फील्ड में गया, तो दूसरे दिन ही वो बंदा या बंदी बोलती है कि अरे नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी। तो वो जैसे आपने पहले कहा कि तकलीफ कंपनी को भी हो जाती है और उस इंडिविजुअल को भी हो जाती
1: है। करेक्ट है, करेक्ट है। और इसमें सर मैं बताता हूँ आपको, बहुत सारे लोगों का है ना टाइम वेस्ट होता है
0: जी।
1: आई मीन जिनको मार्केटिंग बिल्कुल पसंद नहीं, वो MBA मार्केटिंग कर लेते हैं
0: जी,
1: ठीक है, और फिर उनको उसी जॉब का ऑफर आता है, वो करके देख लेते हैं 2-4 साल
0: जी,
1: और 3-4 साल उनके उसी में वेस्ट हो जाते हैं। 3 साल के बाद वो बोलते हैं नहीं यार, मेरा पर्सनैलिटी सूट ही नहीं होता है, मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं इस चीज में
0: जी।
1: तो 3 साल गए ना वेस्ट
0: जी। पॉइंट वाली बात है, बीच में ही बोलूंगा बाजी सर, कि आप 3 साल के बाद आप रियलाइज करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी सूट नहीं हो रही है।
1: करेक्ट।
0: तो उसके पहले है कि जब आपका फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन लेते हैं, तभी ये सब चीज अगर आप देख लेंगे तो आपको आपका करियर का 3-4 साल कभी वेस्ट नहीं होगा।
1: करेक्ट है, पर्सनैलिटी, पर्सनल इंटरेस्ट,
0: यस।
1: तो ये थर्ड पॉइंट हो गया पर्सनल इंटरेस्ट
0: जी।
1: तो फोर्थ पॉइंट के बारे में थोड़ा सा बताइए सर
0: जी। अब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल मार्केट में यानी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कितनी अवेलेबल है?
1: हाँ जी,
0: मैं सिर्फ 1 पॉइंट उसको बोलूंगा, दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो सर्विसेज देती है चाहे प्रोडक्ट बनाती है, जिनको मार्केटिंग प्रोफेशनल की जरूरत नहीं है।
1: करेक्ट है,
0: मार्केटिंग की जो अपॉर्चुनिटीज एम्पल अवेलेबल एंड इट विल बी अवेलेबल फॉर एवर।
1: राइट। सो इफ आई मेक अ स्टेटमेंट, इट मे बी यू नो आर्ग्यूएबल स्टेटमेंट
0: जी,
1: कि आज की डेट में हाईएस्ट जॉब जो अवेलेबल है मार्केट में
0: जी,
1: वो मार्केटिंग की
0: नहीं है। बिल्कुल सही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो मेरा स्टैटिस्टिक्स जो है मैंने देखा है, मे बी रॉन्ग ऑल्सो, मे बी अराउंड 60% के तकरीबन मार्केटिंग के जॉब अवेलेबल रहते हैं।
1: टू टू,
0: क्योंकि जो भी कंपनी है उनको मार्केटिंग प्रोफेशनल चाहिए ही चाहिए। अब उसमें दो चीज आप देख लीजिए, अगर आपका टेक्निकल ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड है, जैसे कि BCA या BCS आपका है, तो आप टेक्निकल कंपनी में, आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, IT कंपनी में आप मार्केटिंग का जॉब देखिए।
1: राइट, राइट।
0: अगर आप नॉन टेक्निकल हैं, तो बाकी बची इंडस्ट्री जैसे हो गया बैंकिंग, हो गया कंज्यूमर ड्यूरेबल, हो गया FMCG, हो गया, इस फील्ड में आप अपना जॉब सर्च कीजिए। तो आपकी क्या राय है?
1: ट्रू सर, ट्रू, आपने सही बताया, दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज इसमें है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल कंपनीज, देर आर सो मेनी वैरायटी ऑफ द कंपनी, सो मेनी फील्ड्स आर देयर
0: जी,
1: और उसमें हर एक फील्ड में अलग अलग नॉलेज के, अलग अलग एजुकेशन के लोग मार्केटिंग के लिए चाहिए रहते हैं, तो इसमें अपॉर्चुनिटीज सभी लोगों के लिए
0: जी, जी बाजी सर। तो हम मार्केटिंग का जो स्पेशलाइजेशन किन लोगों ने लेना चाहिए, तो हम एक बार फिर से पॉइंट को रिपीट कर देते हैं। पहला पॉइंट आपको देखना होता है कि एजुकेशन बैकग्राउंड क्या आपका, दूसरा दूसरा पर्सनालिटी, तीसरा पर्सनल इंटरेस्ट और चौथा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। चार फैक्टर्स के बारे में हमने टच कर लिया कि मार्केटिंग किस स्पेशलाइजेशन किन लोगों ने लेना चाहिए,
1: किसने इसको चॉइस करना
0: जी,
1: चाहिए।
0: जी बिल्कुल। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी और हम उसमें टच करेंगे एचआर स्पेशलाइजेशन किसने लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।
1: थैंक यू।

इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट।
1: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं 90.8 FM रेडियो मनभावन पर कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, एक पशु का जीवन कैसा होता है? वह सुबह उठता है, भोजन की तलाश करता है, पेट भरता है, आराम करता है और सो जाता है। उसका पूरा जीवन केवल अपने शरीर की सुरक्षा और भूख को मिटाने के इर्द गिर्द ही घूमता है। इसके पास कोई आत्मविवेक नहीं होता, कोई चैतन्य बुद्धि नहीं होती जिससे वह अपने अस्तित्व के रहस्य को जान सके। लेकिन विधाता ने जब मनुष्य को बनाया तो उसे केवल एक शरीर नहीं दिया, बल्कि उसे सोचने, समझने और स्वयं को जानने की एक दिव्य चेतना भी दी। पर विडंबना देखिए कि हम इंसान अपनी पूरी उम्र केवल इस शरीर को सजाने, संवारने और इसकी भूख मिटाने में ही खर्च कर देते हैं। कबीर साहब आज हमें इसी पाशविक वृत्ति से जगा रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह परम सूत्र। इही अवसर चेत्या नहीं, पशु जो पाली देह, राम नाम जाप्या नहीं, अंति पड़ी मुख खेह। इही अवसर चेत्या नहीं, पशु जो पाली देह, इही अवसर चेत्या नहीं,

0: हूँ। श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं, यही अवसर चेत्या नहीं, मनुष्य जन्म का यह जो सर्वश्रेष्ठ अवसर तुम्हें मिला था, इसमें भी तुम नहीं चेते, नहीं जागृत हुए, तुम्हारी अंतरात्मा नहीं जागी। तुमने क्या किया? पशु जो पाली देह, तुमने अपने इस कीमती शरीर को ठीक वैसे ही पाला जैसे कोई पशु अपने जिस्म को पालता है। सिर्फ खाने पीने सोने और भोग विलास में ही तुमने अपनी पूरी ऊर्जा नष्ट कर दी। इसका परिणाम क्या हुआ? अगली पंक्ति में कबीर कहते हैं, राम नाम जाप्या नहीं, तुमने उस राम नाम को, उस भीतरी आत्म तत्व को कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, जो इस नश्वर शरीर के भीतर छिपा अमर सत्य था। और अंत क्या हुआ? अंति पड़ी मुख खेह, अंत समय में जब काल का बुलावा आया तो उस मुख में जिसे तुम 56 भोग खिलाते थे केवल खेह यानी धूल और राख ही पड़ी। सब कुछ यही मिट्टी में मिल गया। अगर इसे हम दर्शन शास्त्र की दृष्टि से देखें तो यह दोहा हमारी चेतना के स्तर को मापने का एक पैमाना है। भारतीय दर्शन में मानव देह को मोक्ष का द्वार कहा गया है, एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा आत्मा अपने परमात्मा से मिल सकती है। लेकिन जब मनुष्य केवल इंद्रियों के सुख में ही लिप्त रहता है तो वह अपनी आध्यात्मिक प्रगति को रोक देता है। कबीर समझा रहे हैं कि बिना राम नाम के यानी बिना आत्मबोध के मनुष्य की सारी बौद्धिक उन्नति और सारा ऐश्वर्य महज एक पशु के जीवन जैसा ही है। मौत के समय जब यह भौतिक शरीर राख बनता है तब समझ आता है कि हमने एक अमर अवसर को केवल मिट्टी के बदले में गंवा दिया। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा खुद से यह कड़वा सवाल कीजिए कि हमारे और एक पशु के दिनचर्या में क्या बुनियादी फर्क है। अगर हम भी सिर्फ संग्रह करने और भोगने में लगे हैं तो हम कबीर की इस कसौटी पर कहाँ ठहरते हैं। आज कोशिश कीजिए इस शरीर के मोह से थोड़ा बाहर निकलने की। देह की रक्षा जरूर कीजिए पर इसे ही अपना अंतिम लक्ष्य मत मानिए। अपने भीतर के उस राम को भजिए, उस चैतन्य सत्ता का ध्यान कीजिए जो इस देह के मिटने के बाद भी बची रहती हैं। सांसों की पूंजी खत्म होने से पहले जाग जाइए ताकि अंत में आपके हाथ राख नहीं बल्कि अमरता का आनंद लगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साथ हो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: ट्यून इन एनीवेयर रेडियो मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।
2: रेडियो मन भवन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।
3: ग्राम गीता चिंतन भाग 24। हे सूत्र जर या देशातील प्रत्येक जाणत्या माणसाने अभ्यासले असते तर आज भारत उच्च पदावर पोहोचला असता। आज देशाची काय अवस्था आहे? एक कवी वर्णन करतो, किसी दोषे हमने तंबाकू मांगी, तभी किसी भिकारी ने हमारे ओर हाथ बढ़ाया। मैंने कहा, भीख मंगते हुए शर्म नहीं आती? ओ बोला, तंबाकू मंगते हुए आपको आई थी क्या? अरे बाबूजी, मांगना हमारे देश वालों का कैरेक्टर है। जो जितना सफाई से मांगे वो उतना एक्टर है। आजादी के बाद मांगने वालों की बाढ़ आ गई, देने वालों का सूखा पड़ा है। जिसे देखो वो मांगने वालों के लाइन में भूखा खड़ा है। चंदा मांगने वाला भिकारी, धंधा मांगने वाला भिकारी, दान मांगने वाला भिकारी, दहेज मांगने वाला भिकारी, और तो और नोट मांगने वाला भिकारी, नोट मांगने वाला भिकारी और तो और वोट मांगने वाला भी भिकारी, जो हर दरवाजे पर जाता है, अपनी नाक रगड़ता है और घिस जाने पर रबर की खरीदता है, फिर भी नाक वाला कहलाता है। बाहर से देखिए रबर की नाक, पत्थर का दिल, जनता के जिम्मे इलेक्शन का बिल, लोग बात समाचार तो समाचार, पड़ोसी से आचार तक मांग के खाते हैं। रहा विचार तो महंगाई के मारपीट से दफन हो गया। हे बाबूजी, समाजवाद उदासीन आएगा, समाजवाद उस दिन आएगा जब पेट के लिए कोई नहीं करेगा बेईमानी, हर नागरिक दिल से कहेगा हम हिंदुस्तानी। इससे तो अच्छा मेरा धंधा है जो भिखारी का है। ओ बाबूजी, एक एक पैसा ईमानदारी का है, ना किसी की जेब काटी ना किसी का गला, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। ही अवस्था गाँव शहर देशाची हो नये, यास तव 70 वर्षापूर्वी पासूनच ग्रामगीता ग्रंथासह साहित्य लेख

0: श्रोते हो, हसी का हंगामा, कहकहों का खजाना, ज्याला आपण म्हणतो तो म्हणजे हास्य तरंग.
1: एक था गरीब सब्जी वाला आणि एक थी परी महिलों की सब्जी वाला. महिलों की परी नवंबर की ठंडी में जब वो गई मंडी में, सब्जी वाले का उड़ गया होश. नरम नरम लाइफ में गरम गरम जो
0: कार्यक्रमात आम्ही आपल्या सर्वांचं स्वागत करत आहोत.
2: Hee hee hee hee.

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण कर रहे हैं सुप्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी का। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, जिसका सही जवाब देने वाले भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छायाचित्र। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है WATANKARAAG@gmail.com और RADIOAZADHIND@gmail.com। आप हमें SMS के जरिए भी जवाब भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7771908908। नंबर एक बार फिर सुन ले, 7771908908। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जी। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जी। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जी।

अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण के खिलाफ जब एक ओर पूरा भारत लड़ाई लड़ रहा था, भारत मां के वीर सपूत जब ब्रिटिश शासन के समक्ष चुनौती बनकर लगातार खड़े हो रहे थे, क्रांति के मार्ग पर चलते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल रहे थे, तब दूसरी ओर भारत का एक सच्चा सपूत अपनी कलम की ताकत से पूरे देश को एकजुट कर रहा था। उस वीर सपूत का नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी न सिर्फ एक उपन्यासकार थे, बल्कि वो एक महान कवि, गद्यकार और पत्रकार भी थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं से स्वतंत्रता की ऐसी अलख जगाई जिससे पूरा भारत वंदे मातरम के जय घोष से गूंज उठा। हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की ही रचना है। स्वाधीनता संग्राम के दौरान वंदे मातरम एक मंत्र की तरह पूरे भारत में गूंज उठा था। बलिदान की एक ऐसी भावना जन मन में पैदा हो गई थी कि जाति, धर्म और संप्रदाय की दीवारें टूट गईं। भारतीयता ही हर व्यक्ति का प्रथम परिचय और भारत की आजादी ही सबका पहला लक्ष्य हो गया। सच तो ये है कि उनका लिखा गीत वंदे मातरम स्वाधीनता संग्राम के उस दौर में अंग्रेजों की खिलाफत करने का प्रतीक बन गया था, और देश की आजादी के बाद वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत घोषित हुआ। बंकिम चंद्र चटर्जी ओजस्वी राष्ट्रवादी और साहित्यकार थे। वे आधुनिक बांग्ला साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। बंकिम बाबू ने अपनी कलम के जरिए भारतवासियों के भीतर ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह की चेतना जगाई। बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म 27 जून सन 1838 को उत्तरी 24 परगना के कंथलपाड़ा नैहाटी में एक परंपरागत समृद्ध और कुलीन बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता सरकारी नौकरी में थे, जो बाद में बंगाल के मेदिनीपुर में उप कलेक्टर बन गए। मेदिनीपुर में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर बंकिम चंद्र चटर्जी ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। किताबों से उन्हें अत्यंत प्रेम था तथा खेल कूद में भी उनकी विशेष रुचि थी। बंकिम चंद्र चटर्जी का विवाह मात्र 11 वर्ष की आयु में ही हो गया था, और उनकी पत्नी का निधन कुछ ही वर्षों बाद हो गया। उसके बाद उन्होंने दूसरा विवाह राजलक्ष्मी देवी से किया। बंकिम चंद्र चटर्जी को उसी साल स्नातक की उपाधि प्राप्त हुई जिस साल भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ पहली बार संगठित लड़ाई लड़ी गई थी, साल 1857। इसी साल उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए पास किया। प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए की उपाधि प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय थे। सन 1869 में उन्होंने कानून की डिग्री भी हासिल की। वे न सिर्फ एक साहित्यकार थे, बल्कि एक सरकारी अधिकारी भी थे। उन्होंने अपने अफसर पिता की तरह कई सरकारी उच्च पदों पर नौकरी की। शिक्षा समाप्ति के तुरंत बाद सन 1858 में डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पर उनकी नियुक्ति हो गई थी। वो कुछ समय तक बंगाल सरकार के सचिव पद पर भी रहे। बंकिम चंद्र चटर्जी को राय बहादुर और CIE की उपाधियां भी प्राप्त हुईं। सन 1891 में वे सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुए। सरकारी नौकरी करते हुए ही उन्होंने 1857 का संग्राम भी देखा, जिसने उनके मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था।

सन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी शासन प्रणाली में व्यापक परिवर्तन किए गए थे। शासन भार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न रहकर महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया था। सरकारी नौकरी में होने की वजह से बंकिम बाबू किसी सार्वजनिक आंदोलन में प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं कर सकते थे। इस कारण उन्होंने साहित्य सृजन के जरिए स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति लोगों के भीतर जागृति पैदा करने का संकल्प लिया। उनके भीतर राष्ट्र गौरव की भावना आरंभ से ही बलवती थी। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति से उन्हें अत्यंत प्रेम था। बचपन से ही उन्हें संस्कृत साहित्य में विशेष रुचि थी। हालांकि उनका अंग्रेजी भाषा ज्ञान भी बहुत अच्छा था, लेकिन बांग्ला भाषा से उनका आत्मिक जुड़ाव था। अंग्रेजी भाषा से उनका लगाव तब समाप्त हो गया था जब अंग्रेजी के एक अध्यापक ने उन्हें बुरी तरह डांटकर नीचा दिखाया था। आजीविका के लिए उन्होंने सरकारी सेवा अवश्य की, परंतु राष्ट्र प्रेम और स्वभाषा प्रेम उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। यही कारण है कि युवावस्था में उनके एक मित्र ने जब अंग्रेजी में उन्हें पत्र लिखा तो उन्होंने पत्र पढ़े बिना ही इस टिप्पणी के साथ उसे लौटा दिया कि अंग्रेजी न तो तुम्हारी मातृभाषा है और न ही मेरी। सरकारी सेवा में रहते हुए भी वे कभी अंग्रेजी भाषा के दबाव में नहीं आए। साहित्य जगत में उनका प्रवेश कविताओं के माध्यम से हुआ था। उन दिनों बांग्ला भाषा में गद्य और उपन्यास लेखन का चलन बहुत कम था। बंकिम बाबू ने इस दिशा में पथ प्रदर्शक का काम किया। हालांकि उनकी पहली प्रकाशित कृति राजमोहन्स वाइफ अंग्रेजी में थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने बांग्ला भाषा में विपुल साहित्य रचा। सन 1865 में मात्र 27 वर्ष की उम्र में उन्होंने दुर्गेश नंदिनी नामक उपन्यास लिखा। इस ऐतिहासिक उपन्यास से ही साहित्य जगत में उनकी धाक जम गई। जिस कुशलता के साथ वे उपन्यास लिख रहे थे, उसी कौशल के साथ वे कविताएं भी रच रहे थे, जो लगातार प्रकाशित होती रहती थीं। आगे चलकर सन 1866 में कपाल कुंडला नामक उपन्यास की रचना उन्होंने की, जो बहुत चर्चित रही। इसके बाद तो अनेक रचनाएं उन्होंने की, मृणालिनी, विषवृक्ष, चंद्रशेखर, रजनी, देवी चौधुरानी आदि। बांग्ला साहित्य के जरिए उन्होंने भारतीय जनमानस तक गहरी पैठ बनाई तथा उनकी रचनाओं का अनुवाद दुनिया की कई भाषाओं में हुआ। इस तरह अनेक उपन्यासों की रचना कर बंकिम चंद्र चैटर्जी साहित्य जगत में छा चुके थे। इन सबके बीच सन 1872 में उन्होंने एक मासिक पत्र का प्रकाशन भी आरंभ किया, जिसका नाम था बंग दर्शन। इस पत्र के जरिए वे गंभीर साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे उठाया करते थे। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने बंग दर्शन में लिखते हुए ही साहित्य जगत में प्रवेश किया था। बंकिम चंद्र चैटर्जी को वे अपना गुरु मानते थे। वे कहा करते थे कि बंकिम बांग्ला लेखकों के गुरु और बांग्ला पाठकों के मित्र हैं। सरकारी सेवा में रहते हुए बंकिम बाबू को कहीं न कहीं ये एहसास हो चुका था कि अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तानियों पर राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक सभी तरह से अत्याचार कर रही है। उन्हें ये भी लगने लगा था कि ब्रिटिश सत्ता हमारी भारतीय संस्कृति की विवेचना गलत तरीके से कर उसे विश्व समुदाय के समक्ष रखती है। ये बात उन्हें लगातार कचोटती रहती थी, क्योंकि भारत गौरव सदा से उनकी आत्मा का संगीत था।

बंकिम बाबू का मानना था कि अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता के असल सत्व को वे अपने लेखन के माध्यम से दुनिया के समक्ष रख सकते हैं। उनके साहित्य सृजन के पीछे की मूल भावना भी यही थी। उनका सर्वाधिक चर्चित उपन्यास था आनंद मठ, जो सन 1882 में प्रकाशित हुआ। ये उपन्यास 1773 में उत्तर बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह पर केंद्रित था। इसी उपन्यास में शामिल किया गया था सुप्रसिद्ध गीत वंदे मातरम। एक तरफ अंग्रेजी सरकार की नौकरी और दूसरी तरफ देश के नव जागरण के लिए उच्च कोटि का साहित्य सृजन, ये कार्य तलवार की धार पर चलने जैसा था। लेकिन बंकिम बाबू डरे नहीं, रुके नहीं। उनकी साहित्य साधना अनवरत जारी रही। 1870 से 80 के दशक में ब्रिटिश शासकों ने सरकारी समारोहों में गॉड सेव द क्वीन इस गीत को गाना अनिवार्य कर दिया था। ब्रिटिश सत्ता के इस आदेश से बंकिम बाबू को ठेस पहुंची, जो उन दिनों डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्यरत थे। संभवतः इस गीत के विकल्प के तौर पर ही 7 नवंबर सन 1876 को उन्होंने संस्कृत और बांग्ला के मिश्रण से एक नए गीत की रचना की, जिसका शीर्षक था वंदे मातरम। शुरुआत में इसके केवल दो ही पद रचे गए, जो कि संस्कृत में थे, और इन दोनों ही पदों में मातृभूमि की वंदना थी। जब सन 1882 में उन्होंने आनंद मठ नामक बांग्ला उपन्यास लिखा, तब इस गीत को उस उपन्यास में शामिल कर लिया, और इस तरह ये गीत अत्यंत लोकप्रिय हो गया। सन 1896 में कोलकाता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया, और इसके बाद तो ये गीत हर भारतीय का कंठहार बन गया। वंदे मातरम गीत क्रांतिकारियों के रगों में जोश बनकर दौड़ता था। वंदे मातरम के जयघोष ने ब्रिटिश सत्ता की नींव हिलाकर रख दी थी। उनका उपन्यास आनंद मठ प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन वंदे मातरम जैसे आजादी का बीज मंत्र बन चुका था। और आज भी वंदे मातरम को न केवल हमारा राष्ट्रगीत होने का गौरव प्राप्त है, बल्कि अपनी रचना के इतने वर्षों बाद भी सन 2003 में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में वंदे मातरम गीत लोकप्रियता की दृष्टि से दूसरे स्थान पर रहा। कम ही कविताओं और गीतों के भाग्य में ऐसा यश आता है। आधुनिक बांग्ला साहित्य के प्रवर्तक बंकिम चंद्र चटर्जी का निधन 8 अप्रैल सन 1894 को हुआ। एक ऐसे साहित्य सेवी, देश सेवी और सच्चे भारतीय के अवसान से समूचा देश शोक में डूब गया। उनकी रचनाएं आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी कलम की ताकत से स्वतंत्रता सेनानियों का जोश बढ़ाने का काम किया। भले ही वो कभी शारीरिक रूप से आजादी की लड़ाई में नहीं उतरे, लेकिन उनकी रचनाओं, उनके लेखों, उनकी कविताओं, उनके शब्दों ने जो राष्ट्र चेतना जगाई, वो अतुलनीय है। वंदे मातरम जैसे अमर गीत के रचयिता, कलम के ऐसे महान सिपाही को हमारा शत शत नमन।

0: सरकार आपको बार बार बता चुकी है कि कोविड 19 पीरियड में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप जागरूक बनिए, सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन कीजिए। कोरोना जितनी घातक बीमारी है, उतना ही सरल इसका बचाव भी है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और श्रोताओं, अब वक्त है आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के विजेताओं के नाम जानने का। हमारा सवाल था कि गणेश दामोदर सावरकर का जन्म किस तारीख को हुआ था। इसका सही जवाब है 13 जून। यूं तो कई श्रोताओं ने हमें सही जवाब लिख भेजा है, लेकिन लकी ड्रॉ द्वारा चुने गए

पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र। और श्रोताओं, अब बारी है आज के सवाल की। आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हमारा आज का सवाल है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? सवाल एक बार फिर सुन लें, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। आप हमें SMS के जरिए भी जवाब भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7771908908। नंबर एक बार फिर सुन लें, 7771908908। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं अभय चौहान एक बार फिर हाजिर हुए हैं करियर गाइडेंस प्रोग्राम की अगली एपिसोड में। और मेरे साथ हैं बाजी सर। नमस्कार बाजी सर।
1: नमस्कार सर। नमस्कार।
0: नमस्कार। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने कवर किया था कि कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए। बाजी सर, हमने बातचीत की।
1: करेक्ट है, करेक्ट। जी,
0: जी। तो उसमें कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए, तो उसमें चार फैक्टर का हमने बातचीत की थी कि चार इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है स्पेशलाइजेशन लेने के पहले वो देखना चाहिए। तो एक हो गया एजुकेशन बैकग्राउंड, पर्सनालिटी टाइप, पर्सनल इंटरेस्ट और अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। तो ये चार ही फैक्टर हम आज जो है एक एक स्पेशलाइजेशन के लिए हम उसकी बातचीत हम आज करेंगे।
1: करेक्ट।
0: दोस्तों, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बाजी सर, आपकी इजाजत हो तो बढ़ाइए।
1: हाँ जी सर। हाँ जी सर।
0: जी, तो आज जो हम एमबीए के बाद करने के बाद जो स्पेशलाइजेशन जो है मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन की हम आज चर्चा करेंगे।
1: जी सर।
0: मैंने जो देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है कि मार्केटिंग का स्पेशलाइजेशन जो होता है, अब हम थोड़ा सा एक मार्केटिंग को थोड़ा सा टच भी कर लेंगे बाजी सर, जो यंग दोस्त हैं उनके लिए हम थोड़ा सा आपका मैं ओपिनियन में जानना चाहूंगा, मार्केटिंग फंक्शन क्या होता है कंपनी में।
1: राइट सर। अभी मैं थोड़ा सा आपको इसमें एलाबरेट करके बताता हूँ सर। नॉर्मली लोगों का परसेप्शन जो है वो ये है कि जिसको कुछ आता नहीं उसने मार्केटिंग लेना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना
0: जी।
1: हम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं या फिर कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मार्केटिंग इज अ अफेक्स फंक्शन।
0: ओके।
1: मतलब सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लो आप, है ना, सर्विस इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो
0: जी,
1: है ना, या फिर आईटी इंडस्ट्री हो, मार्केटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन इन एनी बिजनेस।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: और ये फंक्शन का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी और बिजनेस पे।
0: बिल्कुल सही सही।
1: तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ना, यही फंक्शन है जो कंपनी को तरक्की की तरफ लेके जाता है।
0: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो दोस्तों, उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के सारे जो डिपार्टमेंट है वो बेकार है, उसका मतलब ये नहीं होता।
1: ये नहीं होता
0: जी। प्रोडक्ट आप चाहे कुछ भी बना लें, जो बाजी सर कह रहे हैं, सर्विसेस आपकी चाहे कुछ भी रहे, पर उसको मार्केट में जाके बेचना है या उसको मार्केट में, बिकेगा नहीं तो कंपनी चलेगी नहीं, इन शॉर्ट।
1: करेक्ट
0: जी। बाजी सर, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे चार पॉइंट हमने बात की कि फोर फैक्टर्स जो होते हैं स्पेशलाइजेशन चुनने के लिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप शुरुआत कीजिए। तो एजुकेशन बैकग्राउंड क्या होना चाहिए?
1: राइट राइट सर, मैं बताता हूँ आपको। अभी देखिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है
0: जी,
1: इसमें वी रिक्वायर्ड ऑल काइंड ऑफ ग्रेजुएट्स
0: जी,
1: लाइक टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, दोनों तरीके के लोग इसको लगते हैं
0: जी।
1: जैसे इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है तो वहां पे टेक्नो कमर्शियल मैनेजर्स लगते हैं।
0: ओके ओके।
1: मतलब जिनको टेक्निकल नॉलेज है और उनको मार्केटिंग का भी, उनके पास स्पेशलाइजेशन
0: है जी।
1: तो मार्केटिंग फंक्शन चूज दोनों लोग कर सकते हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड वाले और नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाले भी।
0: जी जी। मैं जो समझता हूँ कि अगर टेक्निकल बैकग्राउंड है तो आप टेक्निकल कंपनी में आप

0: आप अपना जॉब अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर आप नॉन टेक्निकल आपका ग्रेजुएशन है तो आप नॉन टेक्निकल में थोड़ा
1: ट्रू
0: मतलब टेक्निकल चाहे नॉन टेक्निकल है ग्रेजुएशन बैकग्राउंड
1: right.
0: दोनों में अपॉर्चुनिटी सेम अवेलेबल जी जी। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, बाजी सर ने जैसे बताया कि एजुकेशन का क्या होना चाहिए और नेक्स्ट मैं पॉइंट टच करता हूँ पर्सनालिटी, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उस इंडिविजुअल की किस टाइप की पर्सनालिटी होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है बाजी सर कि मेरी पर्सनालिटी क्या है जो मार्केटिंग के लिए सूट होता है। तो दोस्तों अगर कागज और पेन है तो पकड़ लो और लिख लो आप जरा, क्योंकि बाजी सर आपका भी एक्सपीरियंस होगा मेरा भी है, गलत पर्सनालिटी के लोग गलत प्रोफाइल में अगर आ जाते हैं तब बड़ा भयंकर डिजास्टर
1: हो जाता है
0: जी। ये आपने भी अपने 18-20 साल के करियर में
1: वो उसके लिए भी प्रॉब्लम होता है और कंपनी के लिए भी प्रॉब्लम होता है।
0: बिल्कुल सही। देखिए कंपनी के लिए प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर भी ओके, पर आपकी इंडिविजुअल के लिए प्रॉब्लम हो रहा है तो बड़ा तकलीफ हो जाता है,
1: बराबर है, उसमें आपका नुकसान भी है।
0: जी जी। तो पर्सनालिटी जो है मार्केटिंग के लिए क्या सूट होती है आज हम आपको बता देते हैं। दोस्तों जिनकी एक्स्ट्रोवर्ट आउटगोइंग आउटस्पोकन जिनकी पर्सनालिटी होती है, जो किसी से भी खुल के बात करते हैं, जिन लोगों की फ्रेंडशिप जल्दी से हो जाती है और खुल के कहीं भी किसी से भी बात कर लेते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पे बात हो जाती, जान पहचान के हैं, अनजान है, रिलेशन में है, आपकी अगर उस तरह की पर्सनालिटी है तो वो आपको परफेक्ट सूट करती है मार्केटिंग के प्रोफाइल के लिए। अब उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है मैं वो भी बताता हूं। आप अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विसेज मार्केट में लेके जाएंगे तो आपके पास कोई पहचान वाला कोई नहीं रहेगा, जिनसे भी आप बात करने जाएंगे तो वो जो रहेंगे कंप्लीटली अनजान लोग रहेंगे और आपको खुल के बात करनी पड़ेगी। आपकी क्या राय है बाजी सर?
1: राइट है सर, ये अपने जो क्वालिटीज बताई है ना, पर्सनालिटी ट्रेट जिसको हम लोग बोल सकते हैं
0: जी,
1: ये हर एक ने खुद को टेस्ट करना चाहिए। जो भी स्टूडेंट अभी सोच रहे कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज करना चाहिए, तो पर्सनालिटी एक बार उसने हर एक ने टेस्ट कर लेना चाहिए कि क्या मैं एक्स्ट्रावर्ट हूँ, आउटगोइंग हूँ, आउटस्पोकन हूँ, है ना?
0: जी, जी।
1: क्या मेरा पॉजिटिव माइंडसेट है?
0: यस यस यस।
1: मुझे बहुत सारे दोस्त कनेक्ट करने में इंटरेस्ट है
0: जी।
1: तो ये टेस्ट करके लेना चाहिए
0: जी,
1: है ना? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
0: मैंने एक चीज इसमें एक थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा। मैंने देखा है कि मैक्सिमम समय में कैसा होता है कि दोस्त ने मार्केटिंग ले लिया और अपॉर्चुनिटी ज्यादा इसमें है, जॉब जल्दी मिल जाएगा करके आप एंट्री ले लेते हो स्पेशलाइजेशन, बाद में आपको बड़ी तकलीफ होने वाली है। और मार्केटिंग प्रोफाइल भी ऐसा होता है कि आप मेंटली रिजेक्शन लेने के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि 100 के पास अगर आप जाएंगे तो 30 ही लोग जो आपकी कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस लेने वाले हैं। आप मेंटली प्रिपेयर हो, अगर आपकी पर्सनैलिटी वैसी है तो आप सूट करते हैं मार्केटिंग के प्रोफाइल के लिए।
1: करेक्ट। तो मैं अभी पर्सनालिटी के बाद में थर्ड पॉइंट पे चलता हूँ
0: जी,
1: पर्सनल इंटरेस्ट
0: जी जी।
1: तो ये तीसरा टेस्ट है दोस्तों, जहाँ पे आप अपने आप को टेस्ट कर लीजिए कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट किस चीज में है
0: जी।
1: जैसे मुझे लोगों के साथ बात करने में मजा आता है, अच्छा लगता है
0: जी।
1: मुझे ट्रैवलिंग अच्छा लगता है
0: जी।
1: मुझे बहुत सारे लोगों से जाके, नए लोगों से जाके मिलना पसंद है
0: जी,
1: है ना? फील्ड का जो जॉब है वो मुझे पसंद है
0: जी,
1: नहीं
0: जी,
1: है
0: जी।
1: कुछ लोग होते हैं जिनको एक जगह पे बैठ के काम करने में अच्छा लगता।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: और कुछ लोग होते हैं जो जिनको एक जगह पे बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उनको ट्रैवलिंग घूमना ये वो बाहर के काम अच्छे लगते हैं
0: जी जी जी।
1: तो यदि आपको बाहर घूमना अच्छा लगता है तो देन दिस मार्केटिंग एंड सेल्स फंक्शन इज सुटेबल फॉर यू।
0: परफेक्टली, परफेक्ट कहा आपने।
1: तो ये खुद एक छोटा सा टेस्ट, एक इंट्रोस्पेक्ट होके ये पर्सनल इंटरेस्ट अपना क्या है
0: जी,
1: ये एक बार हर एक ने देख लेना चाहिए
0: जी जी जी। मैं आपको एक रियल इंसिडेंस भी शेयर कर देता हूँ और दोस्तों के लिए भी हो जाता है, क्योंकि इनिशियली मेरे पास एक बंदा आया, न्यू रिक्रूट हो गया है, मार्केटिंग लिया, हम दूसरे दिन से उसको बोलते फील्ड में गया तो दूसरे दिन ही वो बंदा या बंदी बोलती है कि अरे नहीं मैं बाहर नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी। तो वो जैसे आपने पहले कहा कि तकलीफ कंपनी को भी हो जाती है और उस इंडिविजुअल को भी हो जाती
1: है। करेक्ट है, करेक्ट है। और इसमें सर मैं बताता हूँ आपको, बहुत सारे लोगों का है ना टाइम वेस्ट होता है
0: जी।
1: आई मीन जिनको मार्केटिंग बिल्कुल पसंद नहीं, वो MBA मार्केटिंग कर लेते हैं
0: जी,
1: ठीक है, और फिर उनको उसी जॉब का ऑफर आता है, वो करके देख लेते हैं 2-4 साल
0: जी,
1: और 3-4 साल उनके उसी में वेस्ट हो
0: जाते हैं।
1: 3 साल के बाद वो बोलते हैं नहीं यार मेरा पर्सनैलिटी सूट ही नहीं होता है, मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं इस चीज
0: में।
1: तो 3 साल गए ना वेस्ट
0: जी। पॉइंट वाली बात है, बीच में ही बोलूंगा बाजी सर कि आप 3 साल के बाद आप रियलाइज करते हैं कि आपकी पर्सनालिटी सूट नहीं हो रही है।
1: करेक्ट।
0: तो उसके पहले है कि जब आपका फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन लेते हैं तभी ये सब चीज अगर आप देख लेंगे तो आपको आपका करियर का 3-4 साल कभी वेस्ट नहीं होगा।
1: करेक्ट है। पर्सनालिटी, पर्सनल इंटरेस्ट,
0: यस,
1: तो ये थर्ड पॉइंट हो गया पर्सनल इंटरेस्ट। तो फोर्थ पॉइंट के बारे में थोड़ा सा बताइए सर।
0: जी, अब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल मार्केट में यानी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कितनी अवेलेबल है?
1: हाँ जी,
0: मैं सिर्फ वन पॉइंट उसको बोलूंगा, दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो सर्विसेज देती है चाहे प्रोडक्ट बनाती है, जिनको मार्केटिंग प्रोफेशनल की जरूरत नहीं है।
1: करेक्ट है,
0: मार्केटिंग की जो अपॉर्चुनिटीज एम्पल अवेलेबल एंड इट विल बी अवेलेबल फॉर एवर।
1: राइट, सो इफ आई मेक अ स्टेटमेंट, इट मे बी यू नो आर्ग्यूएबल स्टेटमेंट कि आज की डेट में हाईएस्ट जॉब जो अवेलेबल है मार्केट में वो मार्केटिंग की।
0: नहीं, बिल्कुल सही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो मेरा स्टैटिस्टिक्स जो है मैंने देखा है, मे बी रॉन्ग ऑल्सो, मे बी अराउंड 60% के तकरीबन मार्केटिंग के जॉब्स अवेलेबल रहते हैं।
1: टू टू,
0: क्योंकि जो भी कंपनी है उनको मार्केटिंग प्रोफेशनल चाहिए ही चाहिए। अब उसमें दो चीज आप देख लीजिए, अगर आपका टेक्निकल ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड है जैसे कि बीसीए या बीसीएस आपका है, तो आप टेक्निकल कंपनी में, आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, आईटी कंपनी में आप मार्केटिंग का जॉब देखिए।
1: राइट।
0: अगर आप नॉन टेक्निकल हैं तो बाकी बची इंडस्ट्री जैसे हो गया बैंकिंग, हो गया कंज्यूमर ड्यूरेबल, हो गया एफएमसीजी, हो गया, इस फील्ड में आप अपना जॉब सर्च कीजिए। तो आपकी क्या राय है?
1: ट्रू सर, ट्रू, आपने सही बताया, दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज इसमें है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल कंपनीज, देर आर सो मेनी वैरायटी ऑफ द कंपनी, सो मेनी फील्ड्स आर देयर, और उसमें हर एक फील्ड में अलग अलग नॉलेज के, अलग अलग एजुकेशन के लोग मार्केटिंग के लिए चाहिए रहते हैं, तो इसमें अपॉर्चुनिटीज सभी लोगों के लिए है।
0: जी बाजी सर, तो हम मार्केटिंग का जो स्पेशलाइजेशन किन लोगों ने लेना चाहिए, तो हम एक बार फिर से पॉइंट को रिपीट कर देते हैं। पहला पॉइंट आपको देखना होता है कि एजुकेशन बैकग्राउंड क्या आपका, दूसरा पर्सनालिटी, तीसरा पर्सनल इंटरेस्ट, चौथा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। चार फैक्टर्स के बारे में हमने टच कर लिया कि मार्केटिंग किस स्पेशलाइजेशन किन लोगों ने लेना चाहिए,
1: किसने इसको चॉइस करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी और हम उसमें टच करेंगे एचआर स्पेशलाइजेशन किसने लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।
1: थैंक यू।